परेशी साथे यस्ते प्रसारित होने वाले प्रोग्राम थियो नदा प्रसारण समा सेवज के 5 मिनट हो रहे नहीं वेला हो रहा है प्रोग्राम वंदना नू सर्वन करन दा। आओ प्रोग्राम वंदना दे इस सफर दा आगाज करिए मूल मंत्र दे नाल।

गलत रस्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जिड़ाया बहुत जरूरी है। यह सानू सिखाता है कि साढ़े लिए की सही है ते की गलत है। इसलिए इन चीज़ों का परमात्मा की रजा मनते हुए आनंद लेना चाहिए।

कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास, सुखी प्रभु को दास।

माला हाथ लगे तो हरी साथ साथ लगे, माला हाथ लगे तो हरी साथ साथ लगे, माला मन भजे तो हरी स्वयं हृदय लगे, हरी स्वयं हृदय लगे।

FM बैंड 102.7 MHz से आकाशवाणी राय रेनबो दा जलंधर चैनल है। FM बैंड 102.7 MHz से कड़ी दी सुई दे मुताबिक 7 बजे ने वेला हो रहा जी FM न्यूज़ हेडलाइंस दा।

दिल से दिल तक, बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक दा सफर जिहड़ा आ लेके हाजिर है तुहाडी अपनी दोस्त निशा। बिल्कुल जी, घड़ी सुई जिहड़ी है ओह मैनूं दस रही है कि पूरे दे पूरे 7:04 और 45, 40, 47, 48 सैकेंड जिहड़े आ हो चुके ने, और मेरी अखां दे अगे अज दे नज़ारे दी गल करो ता मैनू मिस्टर शर्मा दिख रहे ने कि वह बूटियां नू पानी दे रहे ने और नाल दे नाल अपने दोस्त दे नाल गल्लां भी कर रहे ने। आहा, वीकेंड वाली मस्ती इंजॉय कर रहे ने शर्मा जी। ला जी, सवेरे सवेरे पौद्यां नू पानी दे के उन्हां दी प्यास बुझाना भी एक बहुत वधिया काम है और दिन की शुरुआत तो वाकई बहुत खूबसूरत है। गर्मी इन्नी ज़्यादा है कि प्यास जिहड़ी है वधो वधी वधी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शर्मा जी ने तो

0: हिस्सा नष्ट हो जाता है। इससे योनि और पेशाब की थैली के बीच एक छेद बन जाता है और उससे लगातार पेशाब का रिसाव होता रहता है।
1: ओके, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कहते हैं कि लगातार पेशाब बहता रहता है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, बस पेशाब निकलता ही रहता है लगातार।
1: जी मैम, मैम डिलीवरी के दौरान इसका जो इलाज है या समय पर प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो पाने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल मैडम, जैसे ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला बनने का सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाधित प्रसव या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है।
1: जी जी,
0: अब अगर सही समय पर आपातकालीन सुविधा ना अवेलेबल हो, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ना हो, सिजेरियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध ना हो, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सही समय पर पहचान नहीं हो पाती, उसका इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला बनने का खतरा ज्यादा होता है।
1: ओके मैम, इस बीमारी से शारीरिक मानसिक जो एक इफेक्ट

0: मैम, डिलीवरी के दौरान इसका जो इलाज है या समय पर प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो पाने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है?
1: बिल्कुल मैडम, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला बनने का सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाधित प्रसव या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है।
0: जी,
1: अब अगर सही समय पर आपातकालीन सुविधा ना अवेलेबल हो, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ना हो, सिजेरियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध ना हो, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सही समय पर पहचान नहीं हो पाती, उसका इलाज नहीं हो पाता,
0: जी
1: जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला बनने का खतरा ज्यादा होता है।
0: ओके मैम, इस बीमारी से शारीरिक मानसिक जो एक इफेक्ट है औरतों पर पड़ता है, वो उनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, उनको कैसे इफेक्ट करता है फिर?
1: जैसे कि ये बीमारी में लगातार मैंने आपको बताया कि पेशाब का रिसाव होता रहता है,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: ये एक तरह से सामाजिक रूप से कलंक जैसा लग जाता है। महिलाएं कहीं आ जा नहीं पाती क्योंकि उन्हें लगातार पेशाब निकलता रहता है, चाहे वो कुछ पैड या कोई कपड़े वगैरह यूज भी करें तो भी वो लगातार भीगता रहता है। बाहर आना जाना उनके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है।
0: जी मैम, मैम तो
1: पेशाब की जो स्मेल आती है उसकी वजह से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको समाज से भी और परिवार भी थोड़ा अलग करने या बहिष्कृत करने लग जाते हैं। कई महिलाओं का जो है वैवाहिक जीवन जो है वो भी उससे
0: डिस्टर्ब
1: खराब होता है, उस पर असर पड़ता है। और महिलाएं परिवार से अलग होने की वजह से और खुद की शारीरिक परेशानियों की वजह से एक हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं।
0: मैम, तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैम, कि इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है, इलाज भी है?
1: हाँ जी मैम, इसका इलाज जो है शल्य क्रिया के थ्रू होता है। अब शल्य क्रिया जो है इसकी उपलब्ध है बहुत से अस्पतालों में, शल्य क्रिया से पूरी तरह से इसका इलाज हो जाता है, 100% ट्रीटेबल है।
0: जी मैम, इस प्रॉब्लम की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला की बात कर रहे हैं, तो इसके बचाव के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको कौन कौन सी सावधानियां जो हैं वो रखनी चाहिए?
1: जी मैम, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम उम्र में गर्भधारण पर रोक होनी चाहिए। जैसे 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका शरीर गर्भधारण के लिए सही नहीं होता, तो बाल विवाह पर रोक बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी
1: उसके अलावा जो एंटीनेटल केयर हम कहते हैं कि नियमित रूप से प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं जांच के लिए और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते रहना चाहिए, कम से कम
0: जी
1: महीने में एक बार, कम से कम। सही पोषण वाला आहार लेना चाहिए उन्होंने, और जहां तक पॉसिबल हो सके डिलीवरी जो है वो अस्पताल में ही करवानी चाहिए,
0: जी
1: खासकर ऐसे अस्पताल में जहां पर आपातकालीन सुविधा हो और 24 घंटे सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध हो।
0: जी मैम, मतलब कि हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप प्रेग्नेंट हो, तो उस दौरान इन चीज़ों को, इसीलिए शायद डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि एक विज़िट जो है महीने में अक्सर होना चाहिए।
1: जी
0: जी मैम, आम लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता भी बढ़ सके और उन्हें एक संदेश भी मिल सके कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको लेडीज फेस करती हैं और अंडरस्टैंड करना भी बनता है?
1: मैम, आम लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगी कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता उन्होंने बढ़ना चाहिए। पीड़ित महिलाएं जो हैं उनको उन्होंने दिलासा देना चाहिए कि एक बीमारी अभिशाप नहीं है, इसका इलाज संभव है।
0: जी
1: दूसरा, इन महिलाओं को जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास सलाह के लिए ले जाना चाहिए। उन्हें थोड़ा पौष्टिक आहार देना चाहिए कि वो जल्दी तंदुरुस्त हो सके, उनकी इम्यूनिटी बढ़े। और उसके अलावा अपने घर की जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका एंटीनेटल केयर और जो चेकअप है वो प्रॉपर करवाएं और डिलीवरी अस्पताल में करवाएं, घर पे डिलीवरी का बढ़ावा कम करें।
0: जी मैम, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट मैम, बिल्कुल एक और बात जानना चाहेंगे कि
1: जी
0: महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की बात करें, सेफ मदरहुड की बात करें, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे मैम?
1: मैम, सेफ मदरहुड के लिए फिर मैं यही कहूंगी, महिलाएं अपने पूरे परिवार का और सब पूरी दुनिया का ध्यान रखती हैं, पहले वो अपना ध्यान रखें। तभी
0: जी
1: जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं और बोलते हैं कि पहले अपने आप को मास्क लगाएं फिर बाकियों को,
0: जी
1: वैसे
0: जी
1: ही महिलाओं ने सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए।
0: जी
1: जब वो खुद प्रेग्नेंट होती हैं अपने आहार पे, अपने व्यायाम पे ध्यान दें, जो गर्भावस्था के दौरान व्यायाम किए जाते हैं वो करें, नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं, किसी भी
0: जी
1: प्रकार की परेशानी हो तो वो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें।

0: किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल सरकारी या प्राइवेट उसकी सुविधा उपलब्ध जहाँ पे भी है वहाँ उसका फायदा उठाएं।
1: जी
0: उसके अलावा जैसे हर महीने 9 तारीख में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है संस्था जो रहती है उनमें फ्री इलाज होता है,
1: जी
0: तो जो अगर पैसों की कमी है या किसी कारण से वो जा नहीं पा रही है अस्पतालों में तो वो उस चीज का भी लाभ उठा सकती हैं।
1: जी
0: खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और डिलीवरी उन्होंने अस्पताल में ही करवाना चाहिए।
1: जी मैम, मैम आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो दी है और उम्मीद करते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में जितनी भी फीमेल लिसनर्स हमारे साथ जुड़ी होंगी उनके ये इन्फॉर्मेशन उनके बहुत काम आएगी। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी।
1: थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, इस वक्त सी साडे नाल डॉक्टर चांदनी बग्गा जिहड़े कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के गए ने। कुछ बीमारियां कुछ इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां दे बारे घट गल कीती जांदी है, घट चर्चा जिहड़ी है ओह कीती जांदी है क्योंकि उहनां दे विच इस तरह लग रहा हुंदा है कि इह चीज़ां नूं असीं ज़्यादा हाईलाइट करांगे तां साडी ही प्रॉब्लम जिहड़ी है ओह सामने आएगी, लेकिन जदों तक असीं खुल के अपने विचारां नूं रखांगे नहीं उन्नी देर तक असीं इस चीज़ तों, इन्हां बीमारियां तों नज़ात जिहड़ी है नहीं पा सकांगे। सो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रैक्टिक फिस्टुला दे उत्ते अज असीं गल कर रहे सी डॉक्टर चांदनी बग्गा जिन्हां ने वाकई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है अज साडे लिसनर्स नूं दित्ती है। उम्मीद करदे हां कि साडे लिसनर्स इह इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है ज़रूर काम आएगी। सो प्रोग्राम दे विच सिलसिला करदे हां कंटिन्यू, चलदे हां चार कदम अगे।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: सुनो, की तुसी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तुहाडा घर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तुहाडा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in ते।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से हुणे तुसीं सुन रहे सी बैक टू बैक गीत संगीत दा प्रोग्राम अड्डी टप्पा। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर केंद्र है। 9 बज रहे ने और वेला हो रहा है एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले विच 51,000 तों वध चुने हुए नौजवानों की नियुक्ति पत्र वंडणगे। पंजाब च रोजगार मेला रेल कोच फैक्टरी कपूरथला विखे पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी च

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारों की छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: समझे हैं। हाँ
1: बढ़िया,
2: बिल्कुल जी, बढ़िया बढ़िया गाने तुसे इंजॉय कर रहे हो। ट्यून इन कितना हाया 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार, ते मैं हाँ जी तुहाड़ी अपनी साक्षी तुहाड़े नाल। वैसे लाइफ दे विच बढ़िया बढ़िया अगर रहना है, मतलब वधिया वधिया असी रहना है, फिट रहना है, हिट रहना है, तो उहदे वास्ते जिहड़ी एक्सरसाइज हैगी, अपना ध्यान जिहड़ा रखना हैगा है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। सो अपना ध्यान जिहड़ा है हमेशा सानू रखना चाहिए, तो एक होर चीज़ का ध्यान जिहड़ा रखना चाहिए, मौसम जिहड़ा है बहुत ज़्यादा बदलिया होया है, सानू प्यास लगती है तो असी ठंडा पानी पीने, गर्मी लगती है तो एसी थले आके बैठ जाने, पर कुछ आस पास साढ़े इदा के भी जीव जंतु ने, जानवर ने, जो अपनी फीलिंग्स न या इस धुप्प तो इस गर्मी तो अपने आप को बचाने के लिए साढ़े तो कितना कितने डिपेंडेंट ने। सो असी उन्होंने लिए भी जड़िया साड़िया ड्यूटीज़ ने उन्होंने जरूर फुलफिल करिए, मतलब टाइम टू टाइम उन्होंने लिए कुछ खाण पीन के लिए जिते अवेलेबल होन चीज़ा उन्होंने लिए रख सकते हैं, पानी का कसूरा भर के अपने घर की छत पर रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पक्षियों के खाण के लिए सतनाजा वगैरह जोड़ा हैगा वो नाल असी रख सकते हैं, ताकि इस गर्मी के जड़ा है उन्होंने भी थोड़ा जि आराम जरूर मिले। बाकी तुहाड़े आराम दे लई हाँ जी गाने तो तैयार ही ने। अगला गाना आ रहा जी इस डांस पे चांस, तुसी भी मार के देखो, मतलब डांस करके देखो, बहुत वधिया लगेगा। ट्यूनिंग करके रखो जी 102.7 FM रेनबो।

बिल्कुल जी, हौले हौले तो है ना, गल्ला करते हुए टाइम दावे बिल्कुल पता नहीं चलिया। टाइम हुन जड़ा है गया प्रोग्राम गीत बहार नू आज दे लई इत्थे ही वाइंड अप करन दा हो गया, पर खुशी दी गल ए वै कि अगला प्रोग्राम पंजाबी तड़का साडा लाइव फोन इन प्रोग्राम होवेगा, जिदे विच फोन करके तुसीं अपनी फरमाइशी पंजाबी गीत जिहड़े ने उस प्रोग्राम दे विच शामिल करवा सकदे हो। ते उस लई साडा नंबर होएगा 0181 2342174। ते गीत बहार नू अज इस अगले गीत दे नाल असीं खत्म करदे हां, ते फिर मिलांगे जी गीत बहार दे विच। चलते चलते।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

जी, ट्यूनिंग के तहत उसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी। मिड डे मेलोडीज़ ते खूबसूरत जे गाणियां दा सफर जिहड़ा है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी हुई है। सो ये गाने जिहड़े ने ना रेट्रो सॉन्ग्स, चाहे वह 60s दे होन या 70s दे होन या 80s दे होन, मतलब जदों भी इन्हों सुनते हैं एक वक्रा ही इन्हों दे विच कह सकते हैं कि अपनापन, मिठापन होंदा है। ता ही तो इस प्रोग्राम का नाम भी मिड डे मेलोडीज़ है। अगला गाना लता जी की आवाज़ दे विच, ते जिस मूवी का यह गीत हैगा ना, अपने हिसाब दे नाल उस टाइम, मतलब यह जो मूवी की एंडिंग सीगी, काफ़ी एक्सपैरिमेंटल मनी गई सी। मूवी का नाम है जी गाइड, तो वह एक खूबसूरत जहा गीत जड़ा है आ रहा है तो रेडियो सैट पर।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन किता है तुसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज। कहते हैं इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। वैसे जिहड़े घर दी चाह हुंदी है या अपना आशियाना जिहड़ा हुंदा है ना, वो चाहे पंछी होन चाहे इंसान होए, हर एक नूं रहिंदी है। अगला गीत आ रहा जी तपस्या मूवी तो, जो कि 1976 दे विच रिलीज़ हुई सी। गाने दे बोल ने दो पंछी, गाया है किशोर जी ते आरती मुखर्जी ने।

प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज। कहते हैं कि मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं, मगर एक आस सी रहती है कि वो याद करेगा। और कई बार तो भी कहते हैं कि अगर हिचकी लग गए ना तो समझो कि कोई थानू याद कर रहा है। तो याद जदों सानू किसी की आती है ना तो उदों भी मन जिहड़ा हुंदा है वो बेचैन जिहा ही रहिंदा है। सो इदां दा एक गीत आ रहा है फ्रॉम द मूवी स्वामी जो कि 1977 दे विच रिलीज़ हुई सी। गाने च आवाज़ है जी किशोर कुमार जी की।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। आज देश भर में 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ये ईच अपॉइंटमेंट लेटर एक सिर्फ सरकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तरफ से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
1: बाद में उन्होंने 93 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र तकसीम किए। इस मौके नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले नौजवानों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया।
2: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
3: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
4: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं SBI जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित की गई हूं। मैं केंद्रीय सरकार को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करती हूं।
5: माय नेम इज तजिंदर सिंह कंडा एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन।
1: उधर पटियाला च पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स के मुख प्रशासकीय अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने मुख मेहमान वजों शिरकत करदिआं वख वख विभागों च नवे भर्ती किए 188 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने आख्या
6: आज यहां पर 19वीं रोजगार मेला का आयोजन किया गया था जिसमें ऑल इंडिया स्तर पे लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं जिसमें से PLW में 188 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 188 नियुक्तियों में से करीब 65 पंजाब से हैं, 128 इंडियन रेलवे में हैं और इंडियन रेलवे के 128 में से करीब 11 हैं वो पंजाब से संबंधित हैं।
1: इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवार ने कहा
7: मेरा नाम विजय दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैंने यह परीक्षा 2024 में इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। मुझे प्रोडक्शन यूनिट में एज अ JE मैकेनिकल जॉब मैंने पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
8: मैं बेसिकली लुधियाने से हूं।
9: मेरा नाम शालिनी चतुर्वेदी है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं। 2026 में मेरा सिलेक्शन एज ए डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के तौर पे हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम को काफी अच्छे से कराया है, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है और जो इस पद के हकदार थे उन्हें मतलब ये पद मिला है।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करेंगे। श्री रूबियो कल विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर नाल भी दवल्ली मीटिंग करेंगे। सोमवार को श्री रूबियो आगरा से जयपुर जाएंगे, इस तो बाद मंगलवार को नवी दिल्ली क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग शामिल होंगे। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर और यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करवा के धोखाधड़ी नाल जमीन की वरतों च तब्दीली प्राप्त करने नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले च गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस वालों किसानों दी शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज किए जाने बाद की गई सी। विभाग की जांच में पता लगे कि मुलजमान ने 15 जमीन मालकों की 30 एकड़ तो वध जमीन के संबंध च फर्जी सहमति पत्र तैयार किए सन। इन्हां फर्जी सहमति पत्रां दे आधार ते मुलजम इकाई जां व्यक्तियां नूं सनटैक सिटी नां दी एक मैगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करन लई जमीन दी वरतों च तब्दीली दी इजाजत दित्ती गई सी। इस दौरान एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने अज सहगल नूं मोहाली स्थित विशेष अदालत विच पेश कीता जिथे अदालत ने उस नूं 27 मई तक ED रिमांड ते भेजन दे हुक्म दित्ते ने। पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां च अज 91 पैसे फी लीटर तक का वादा किया गया जो कि 10 दिनों तो भी घट समय च तीजा वाधा है। उधर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अज CNG की कीमत में 1 रुपए का वादा किया है। इस वादे तो बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नवी दर 81.09 रुपए हो गई है। इस दौरान इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल ते डीजल की सप्लाई स्थिर है ते ईंधन की कोई कमी नहीं है। एक बयान में इंडियन ऑयल ने कहा है कि मंग सप्लाई असंतुलन ते चोणवे खेतरां च वधी हुई मंग कारण कुछ परचून दुकानों ते अस्थिरता दीआं खबरां ने। अजिहीआं घटनावां इंडियन ऑयल ने देश भर में 42,000 तो वध परचून दुकानों के नैटवर्क के अंदर कुछ परचून विक्रेताओं तक सीमित ने। इंडियन ऑयल ने दस्सिआ कि 1 मई तो 22 मई तक की म्याद दौरान कंपनी ने ईंधन की विक्री च महत्वपूर्ण वाधा देखिआ है। पंजाब सरकार ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनज़र लोगों को राहत देने के उद्देश अहम फैसला लेंदे हुए सूबे के सारे दफ्तर स्कूलों कॉलेजों का समा बदलन का ऐलान किया है। नवे समय मुताबक कामकाज का समा मौजूदा सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे की बजाय सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 1:30 बजे तक होगा। इस फैसले का ऐलान करदिया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दसिया कि बदलिया हुआ समा 25 मई तो लागू होगा तो अगले हुक्मां तक जारी रहेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

वो मेरी रूह की चादर में आके ऐसे छुप गया। वो मेरी रूह की चादर में आके ऐसे छुप गया कि रूह निकले तो वो निकले, वो निकले तो रूह निकले। FM रेनबो दी कड़ी दे उत्ते वक्त हो गया है जी, ठीक 2:24 ते 8 सेकंड्स ते प्रोग्राम तुसी एंजॉय कर रहे हो मेरे नाल अपनी दोस्त वंदना दे नाल, दिल आज शायर है। ते जे तुसी हुणे ट्यून इन कीता है प्रोग्राम FM रेनबो दे उत्ते, ते तुसी वी 9855101027 दे उत्ते अपना कोई सोहना जिहा मैसेज मैनू भेज सकदे हो। मैं

प्रोग्राम दे विच उस मैसेज नू जरूर शामिल करांगी। अपना नाम, अपने शहर दा नाम या अपने पिंड दा नाम ते एक सोहना जिहा मैसेज किसी खास वास्ते या अपने वास्ते या प्रोग्राम लई। कहिंदे वे सज्जणा, दिल मेरे नू पई ठगदी ऐ, तेरे चेहरे दी मुस्कान वे सज्जणा मेरे दिल नू पई ठगदी ऐ। बेशक तकिया लख वारी मैं तैनू, पर फिर भी रूह ना रजदी ऐ। मैं जकड़ी गई जंजीर तेरी विच, मैं जकड़ी गई जंजीर तेरी विच, ना कुछ कहण तो जिंद हुण डरदी ऐ। रहिंदी रूह प्यासी दीदार तेरे नू, मैनू लोड़ ना मक्के हजदी ऐ।

मैं उम्र भर ना दे सका उनका अदद जवाब, वो एक नजर में इतने सवाल कर गए। हम कह ना पाए हाले दिल उन्हें कभी, वो समझ ना पाए खामोशी क्या चीज है। ये मैसेज राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियां सुल्तानपुर लोधी तो, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज नूं भेजण लई। माना कि हम लड़ते बहुत हैं मगर प्यार भी बहुत करते हैं, हमारे गुस्से से नाराज ना हो जाना, क्योंकि गुस्सा ऊपर से करते हैं मगर प्यार दिल से करते हैं। चौहान जी अमृतसर तो ये मैसेज भेज रहे ने, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक चीज़ मैं कहना चाहवागी कि चलो ठीक है, प्यार दिल तो जरूर होंदा है, पर गुस्सा जड़ा है ना वो थोड़ा जहा लिमिट विच ही हो तो ज़्यादा बेटर लगता, क्योंकि कई बार जड़े शब्द होंदे ने ना वो चाहे तुसी दिल दे विच रखो चाहे ना रखो, पर कई बार शब्द जड़े ने वो बहुत वड्डा रोल प्ले करते हैं किसी भी रिश्ते दे विच। इस करके अंदर प्यार है ते नाल नाल प्यार तुहाडी जुबान तो भी झलकना चाहिए। जी हाँ, एफ एम रेनबो 102.7 दे उत्ते तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो दिल आज शायर है, ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच बनी हुई हाँ। बहुत सारे मैसेजेस मैनू आ रहे ने इस प्रोग्राम दे विच, ते जिन्हां ने हुणे ट्यून इन

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जो रखता है आपके स्वास्थ्य का ख्याल। और गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, भीषण गर्मी है और इस गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे गर्मी का प्रभाव हमारी आंखों पर कैसे पड़ सकता है। जी हाँ, आज का यही हमारा विषय है, समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में हम अपनी नेत्र रक्षा कैसे करें। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मानव दीप सिंह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर आरएलएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के एफएम के स्टूडियो में आपका।
3: शुक्रिया, नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोता जो हैं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे विशेषज्ञ के सामने रखते हैं और हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान करते हैं। तो आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे श्रोता हमसे अब तक जुड़ गए होंगे। पर सबसे पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर, गर्मियां बहुत हैं और इन गर्मियों में आंखों की आम समस्याएं क्या होती हैं, ये भी जानना चाहूंगी। और साथ ही साथ एक नॉर्मल आंखों की क्या समस्याएं होती हैं, कुछ खास तौर पर गर्मियों में बढ़ जाती होंगी, तो मैं दोनों जानना चाहूंगी आपसे।
3: देखिए, गर्मियों के अंदर एक तो मौसम खुश्क होता है, आजकल अभी बारिश वगैरह नहीं शुरू हुई है, तो बारिश के बाद तो जैसे संक्रमण बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी खुश्की आंखों में बढ़ जाती है, ड्राई आईज जैसे वो बढ़ जाती है। बच्चों के अंदर जो मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, एक वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, एलर्जिक कंडीशन होती है, वो होते हैं। बाकी खेती में जब काम करते हैं तो आंख के अंदर आजकल चोट वगैरह जो है, आंख के अंदर कुछ भी जो है कटाई वगैरह जैसी होती है, तो वो आंख के अंदर लगने का खतरा रहता है। और इसके अलावा जो है आंखों को धूल मिट्टी से फॉरेन बॉडी के आंख के अंदर गिरना, वो सभी सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि आंधी चलती है।
2: और बहुत गर्मी जब होती है तो भी अलग अलग तरह के चश्मे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि किस तरह के चश्मे होने चाहिए, किस तरह की यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और लौटते हैं।

0: जी हाँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और कवि और हमारे जो फिल्मकार हैं और जो लिरिक्स राइटर्स जो होते हैं, गाने जो लिखते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने आंखों की खूबसूरती और आंखों की सुंदरता पे बहुत गाने रचे हैं। तो हम आपकी पसंद का भी गाना अब बजाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत जरूरी ऑर्गन है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो गर्मियां जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो यूवी रेज भी होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं,
1: जी
0: तो कैसे बचाव किया जाए सर?
1: देखिए, यूवी रेज से बचने के पहले तो यह है कि आप जब धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स पहनने चाहिए। जो गॉगल्स हैं जो बहुत सस्ते ये रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे मिलते हैं, उनके अंदर यूवी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो आप अगर गॉगल्स खरीदने जाते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड का हो, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास मशीन होती है चेक करने की, तो आप देखो कि उसके अंदर 99% यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप उसको बोलिए चेक करके दिखाइए हमें।
0: अच्छा, उसको चेक करने का कोई अलग इंस्ट्रूमेंट
1: मशीन
0: होता?
1: मशीन होती
0: मशीन
1: है,
0: होती
1: अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन।
0: अच्छा,
1: कितनी है तो वो लीजिए। दूसरा जो है, आपको आंख को धोते रहना चाहिए। आंख के अंदर बहुत तेज धूप के अंदर आप कम निकले बाहर, जो डे के बिल्कुल जो पीक आवर्स होते हैं, सुबह 10-11 से लेकर 3-4 बजे तक अवॉइड करें बाहर जाना। और आंखों को अगर आप, स्पेशली अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो उसके बाद बेशक आप 2 किलोमीटर भी चले, उसके बाद आंखों को धोइए। तो ये सब चीजें जो है गर्मी के अंदर आपको आंख को बचाव करके रखती हैं।
0: जी, तो खाली सादे पानी से धोना ठीक रहता है कि उसमें कुछ मिलाकर
1: नहीं
0: धोया
1: नहीं
0: जाए?
1: नहीं साफ पानी होना चाहिए, बस सादा पानी।
0: तो वो ठीक रहता
1: हाँ
0: है।
1: जी, हाँ जी,
0: जी, तो जब बाहर जाएं और बाहर से अंदर आएं घर में, तो दोनों समय इसको अपने आंखों को धोना चाहिए?
1: बाहर से जाने के टाइम कोई खास जरूरी नहीं होता, लेकिन जो ही बाहर से अंदर आते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ भी हो, आपकी आंख में थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी गर्मी में जाएगी ही। स्पेशली जब अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो उस वक्त आपकी आंख में जरूर कुछ ना कुछ जाता है।
0: जी, तो हमारे श्रोता फोन लाइन से जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं।
1: हाँ जी
0: हेलो।
2: जी हेलो।
0: जी
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, जो चादर कर रहा हूँ।
0: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप, प्रश्न कर रहे हैं।
1: नमस्कार जी, बताइए।
2: जी मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी
2: जी, मैं सर बोल रहा हूँ कि मैं जब सिलाई करता हूँ, सिलाई का काम करते हैं।
1: हाँ जी,
2: तो इसमें मतलब आँख का बचाव कैसे करें?
1: आपकी उम्र कितनी है?
2: जी उम्र जी 28 वर्ष हो रहे हैं।
1: आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ठीक दिखाई देता है तो आप बिल्कुल काम करते जाइए, बेफिक्र रहिए, जितना मर्जी काम कीजिए। बस ये सीधा, जैसे गर्मी के मौसम में खास तौर पे पंखे के सामने, एसी के बिल्कुल सामने मत बैठिए, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और
2: आंख लाल हो जाते हैं सर।
1: देखिए, लाल अगर हो जाती है तो आपको आंख को धो सकते हैं फ्रीक्वेंटली, दिन में 4-5 दफा धोएं। और उससे नहीं ठीक होता तो फिर आपको लाली का जो कारण एलर्जी हो सकती है, कुछ और समस्या हो सकती है, तो फिर वो आपको तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, देख के ही बताया जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि पानी से आंखों को धोना ठीक रहता है जब हम बाहर से आए धूल मिट्टी के लिए। हमारे एक श्रोता है अरविंद, ये यमकेश्वर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से मैसेज भेजकर हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या ड्राई आईज में कचरा गिरने पर पानी से धोना चाहिए कि नहीं?
1: बिल्कुल धोना चाहिए, पहला स्टेप तो हर चीज के लिए पानी से धोना ही है। और अगर आपकी आंख में कचरा गिर गया है और वो पानी धोने से नहीं निकला, तो वो आपको रड़कता रहेगा, जैसे आंख के अंदर आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और अगर रहता है तो फिर आप उसके लिए इंतजार मत कीजिए, आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो चीज आंख के अंदर गिर गई है, अगर उसको इमीडिएटली नहीं निकाला जाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है, और उससे नजर के ऊपर असर पड़ सकता है, जो कि ताज जिंदगी रहेगा, तो इसलिए उससे बचना चाहिए।
0: तो ये कैसे डॉक्टर साहब पता लगेगा उन्हें कि

0: इस समय हमें जाना चाहिए? मतलब पेन होगा क्या, कैसे
1: पेन
0: हमें?
1: पेन तो जरूरी नहीं है, पेन तो थोड़ा देर में आता है, लेकिन आंख के अंदर अगर कुछ पड़ा होगा तो वो एकदम से कोई मिस नहीं कर सकता उसको।
0: जी जी, किरकिराहट
1: किरकिराहट उसको रहेगी
0: जी, जी
1: रहेगी
0: जी। हमारे एक श्रोता है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर इन्होंने लिखा है गर्मियों में आंखों की क्या विशेष देखभाल करें। तो हम बता दें आपको कि आज पूरा ही कार्यक्रम हमारा इसी पर केंद्रित है, तो आप कंप्लीट हमारा पूरा 4 बजे तक ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का विषय ही हमारा ये है, समर्स एंड आई केयर। ये मैसेज हमें भेजा है नेहा ने मुंबई से, प्लीज सजेस्ट अ गुड आई ड्रॉप फॉर ड्राई आईज, ये इन्होंने पूछा है। नाम तो हम नहीं लेते हैं किसी पर, ड्राई आईज की जो समस्या है डॉक्टर साहब, ये क्या बढ़ जाती है गर्मियों में?
1: देखिए ऐसा है, ड्राई आईज की समस्या गर्मी में थोड़ी सी बढ़ती तो है ही, लेकिन जितना ड्राई आईज का शोर है समाज के अंदर, मुझे लगता है ये काफी इंडस्ट्री ड्रिवन है, इतनी ड्राई आई नहीं होती है। ड्राई आई है
0: जी।
1: और गर्मी में बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं है जितना इसका शोर होता है। तो इससे बचने के लिए आई ड्रॉप्स

0: हमारा इसी पर केंद्रित है, तो आप कंप्लीट हमारा पूरा 4 बजे तक ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का विषय ही हमारा ये है, समर्स एंड आई केयर। ये मैसेज हमें भेजा है नेहा ने मुंबई से, प्लीज सजेस्ट अ गुड आई ड्रॉप फॉर ड्राई आईज, ये इन्होंने पूछा है। नाम तो हम नहीं लेते हैं किसी पर, ड्राई आईज की जो समस्या है डॉक्टर साहब, ये क्या बढ़ जाती है गर्मियों में?
1: देखिए ऐसा है, ड्राई आईज की समस्या गर्मी में थोड़ी सी बढ़ती तो है ही, लेकिन जितना ड्राई आईज का शोर है समाज के अंदर, मुझे लगता है ये काफी इंडस्ट्री ड्रिवन है, इतनी ड्राई आई नहीं होती है। ड्राई आई है
0: जी।
1: और गर्मी में बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं है जितना इसका शोर होता है। तो इससे बचने के लिए आई ड्रॉप्स जो है, लुब्रिकेंट ग्रुप के आई ड्रॉप्स होते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लगभग हर कंपनी बनाती है, और उसको आप यूज कर सकते हैं। और ड्राई आईज के लिए अगर किसी को बहुत ज्यादा है, जो जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के साथ जो ड्राई आई होती है वो काफी ज्यादा सीरियस होती है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद जरूरी होता है। और उसमें साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह कुछ ऐसी सीरियस दवाइयां होती हैं जो कि देनी पड़ती हैं।
0: तो ये ड्राई आईज पहली बात की होती क्यों है, और आपने कहा कि आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, तो क्या लैपटॉप का ओवर यूज, फोन का ओवर यूज ये कारण है कि कुछ और कारण है?
1: पहला कारण तो इसका है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये इंडस्ट्री ड्रिवन है।
0: अच्छा, वो आपने कहा जी।
1: ड्राई आईज जो है अक्सर जो होती है वो लेडीज में होती है, जब महामारी खत्म होती है उसके बाद जो है ड्राई आईज ज्यादा हो जाती है। और जो है इसके अलावा लैपटॉप का यूज वगैरह से क्या होता है कि वो टेम्परेरी ड्राई आई होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम कोई भी स्क्रीन को देखते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट जो है झपकने का आंख को, वो जो है नॉर्मली जो 13-14 होता है वो कम रह जाता है, वो 8-10 रह जाता है। तो उससे जो आंख के जो आंसू होते हैं बाहर, जिनकी लेयर बनी होती है, टीयर फिल्म जो होती है, वो पूरी तरह से वो मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, तो वो खुश्की आने लगती है। दूसरा क्या है कि हम आंखें ज्यादा चौड़ी खोल के रखते हैं, जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं, स्पेशली जब कंप्यूटर को देख रहे होते हैं, तो आंख को बहुत ज्यादा खोल के रखते हैं, तो उससे जो है
0: नुकसान करता है,
1: इवेपोरेशन हो जाती है।
0: अच्छा,
1: उड़ जाते हैं टीयर्स जो है, इतने थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से
0: बड़ा बढ़ जाता है, तो
1: सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो उड़ जाते हैं। तो उससे टेम्परेरी ड्राइनेस होती है, ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो नॉर्मल एक बॉडी की रिस्पॉन्स है। तो इसके लिए आपको आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर लेना चाहिए, पूरा टाइट बंद कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर खोल ले, काम करने लगे, और फिर बाहर अगर आपके कमरे के अंदर खिड़की वगैरह है तो खिड़की से बाहर थोड़ा दूर देखें, फिर से काम करें। और अगर आपको फिर भी ज्यादा अगर कुछ सिम्टम्स आने लगे तो फिर आप जो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं
0: जी। और ये जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज करते हैं, तो इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है डॉक्टर साहब, के दिन में कितनी बार यूज
1: नहीं
0: करें?
1: अगर किसी को स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं है तो दो दफा तीन दफा अच्छा, काफी होता है मैक्सिमम, ज्यादा की जरूरत नहीं।
0: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते।
2: हाँ जी, एस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: जी। चट्ठा जी अपना प्रश्न करें।
2: हाँ डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि समर में जैसे आप बता रहे हैं आई की केयर के बारे में, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो और जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन दोनों में क्या क्या अलग से कोई प्रिकॉशन करना चाहिए?
1: नहीं जी, कोई अलग से प्रिकॉशन नहीं है, दोनों के लिए सब ठीक होता है। जैसे बाकी सबके लिए हम बात कर रहे हैं, जो पूरे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, वैसे ही सबके लिए, बेशक ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो।
0: जी हमें हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा है, जिनका मैंने प्रश्न मैसेज पे लिया था कि गर्मियों में क्या विशेष देखभाल चाहिए, अपना नाम उन्होंने लिखकर भेजा है। मान्या सिंह है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। इन्होंने ये भी लिखा है कि ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करने पर आंखें गर्म हो जाती हैं, तो क्या करें, जैसे पढ़ाई करने पे या टीवी देखने पे। तो आपने काफी कुछ तो डॉक्टर साहब अभी बताया कि थोड़ा रेस्ट देना चाहिए उन्हें,
1: रेस्ट देना चाहिए। और अगर आपको गर्मी में ज्यादा आपको दिक्कत होती है, आपके घर में कोई कूलिंग का सिस्टम नहीं है, तो आप थोड़ी सी बर्फ सूती कपड़े में लेकर आंख के ऊपर लगा सकते हैं।
0: अच्छा, ठंडी सिकाई टाइप की। जी जी। सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं, कहां से लिख रहे हैं ये तो नहीं बता रहे हैं, पर इन्होंने लिखा है मेरे आंखों में पानी गिरता है आंखों से, और कंटिन्यूस रहता है ये ऐसे आंखों से गिरना, और 5 साल से ऐसा हो रहा है। तो इनको कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या विशेष ये करें?
1: इनकी उम्र नहीं पता,
0: उम्र तो आप अगर हमें सुन रहे हैं सुशील जी, तो हमें मैसेज करके उम्र भी लिखें। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और हम ये फिर प्रश्न बाद में लें सर। फिर
1: नहीं कोई बात। अच्छा, जो जिस जैसे ये मेल है, और उम्र मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगी। एक तो ये होता है कि पानी अगर आंखों में आता है, सबसे पहली चीज जो हमने एक्सक्लूड करनी होती है वो है कि कोई रास्ता तो नहीं बंद, क्योंकि नॉर्मली जो आंसू हैं आंख की सफाई के बाद, वो एक छेद होता है आंख के अंदर, उस छेद के जरिए जो आईलिड्स के अंदर होता है उसके जरिए वो नाक में चले जाते हैं, और ये 24 आवर्स सब में चलता रहता है। तो अगर वो बाई

0: बस किसी कारणवश स्पेशली अगर नाक की कोई किसी को एलर्जी वगैरह रहती है तो उससे वो रास्ता कई बार बंद हो जाता है, तो आंसू जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से ड्रेन नहीं हो पाते, तो ये इसको एक्सक्लूड करना जरूरी होता है। दूसरा कि अगर किसी को एलर्जी वगैरह अगर होती है तो उससे भी पानी लगातार आता रहता है। इसके अलावा अगर किसी को चश्मे की जरूरत हो लेकिन वो चश्मा ना लगाए, आंखों पे जोर पड़ता है, उससे भी पानी आने लगता है। और इसके अलावा ड्राइनेस जब किसी को ज्यादा हो जाती है तो कई बार उससे भी रिएक्टिव टीयर सिक्रेशन बढ़ जाता है।
1: ड्राइनेस में भी
0: ड्राइनेस से भी कई बार जो है पानी बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंडिविजुअल को चेकअप से ही पता लगेगी।
1: जी जी, तो आप जरूर नेत्र एक विशेषज्ञ के पास जाइए और चेकअप कराइए सुशील जी, तो सही जो कॉज है वो पता लगेगा तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है। ये हमें लिखकर भेजा है उमेश कुमार ने खयाला से, और ये लिख रहे हैं कि आंखों में कभी कभी पानी आता है और पलकों में कभी खुजली भी होती रहती है, ये जानना चाह रहे हैं।
0: ये चीजें गर्मी के अंदर नॉर्मल होती है और एलर्जी होती है, इनके सिर्फ पानी से धो लेना चाहिए और ठंडे पानी से और ठंडी सिकाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे में किसी दवाई वगैरह की जरूरत अक्सर नहीं होती है।
1: जी, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हमें लिख रहे हैं मैसेज के जरिए, डॉक्टर साहब इनकी उम्र 62 ईयर्स है और ये कहते हैं कि मोबाइल देखते समय 20 मिनट बाद मैं पलक झपकता हूँ, तो आंखों में ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ गिर गया है या ऐसा लगता है ऐसे पानी आ रहा है आंखों में, तो ये क्या ज्यादा देखने के कारण?
0: ये सब ज्यादा देखने की वजह से है। और जब मैंने बताया कि ब्लिंक रेट कम हो जाता है, ये कह रहे हैं कि मैं 20 मिनट तक झपकता हूँ उसके बाद ज्यादा झपकता हूँ, तो ये एकदम बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, आपको ज्यादा झपकना चाहिए आंखों को, बीच बीच में जोर से बंद भी करना चाहिए और इतना कंटिन्यूस आप मोबाइल मत देखिए, क्योंकि इससे तो फिर आपकी टेम्परेरी ड्राइनेस जो है वो बार बार करने से ऐसे रहने से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर वो मत कीजिए। थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए, वैसे भी आपकी उम्र 62 साल हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा कम कीजिए इस चीज को।
1: और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये तो सबके लिए आपकी समझाइश होगी, क्योंकि बच्चे भी बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल पे, कंटिन्यूस खेलते रहते हैं वो गेम्स, तो उन्हें भी ब्रेक लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। उनको सिर्फ ये नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका चश्मे का नंबर लग जाता है।
1: अच्छा।
0: पहले हमारे जो टेक्निकली अगर आप देखें, अगर हमारे साइंटिफिकली देखें तो 18 साल से बड़े बच्चे को चश्मा नहीं लग सकता माइनस नंबर का, लेकिन आजकल जो है हर एज पे 20 22 25 साल की उम्र तक भी कई लोगों को बच्चों को लग जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है।
1: जी, और भी बात करेंगे हम गर्मियों में कैसे आंखों की रक्षा आप कर सकते हैं, आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह हैं जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, इसी तरह से हम बने रहेंगे 4 बजे तक आपके साथ, तो अपने प्रश्न भेजते रहिए। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर साहब की पसंद पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का हमारा विषय समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में नेत्र सुरक्षा कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
3: प्रणाम जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि गर्मियों में धूप में टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लगाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों को नजर का चश्मा लगा हुआ है दूर और पास का, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? नंबर टू, जो ये हम आई ड्रॉप डालते हैं उसको केमिस्ट ये बताते हैं इसको खोलने के बाद इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक मंथ तक है, कुछ ऐसे आई ड्रॉप भी आते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी टाइम तक होती है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर।
3: पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दूंगा कि शेल्फ लाइफ जो है ये ना एक्चुअली लीगल रिक्वायरमेंट है उनका लिखना कि एक महीने के अंदर जो है दवाई खराब हो जाती है। ये उस जमाने में होता था जब शीशे की शीशियां होती थी जो ग्लास की बनी होती थी और उसके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन होते थे, तो वो टूट जाते थे तो उससे इन्फेक्ट हो जाता था। आजकल जो है हालांकि लिखा तो कानूनी तौर पर यह होता है कि एक महीने के अंदर ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप दवाई को फ्रिज में रखते हैं और आपकी दवाई की शीशी जो है टूटती फूटी नहीं है, ढक्कन इधर उधर गिरता नहीं है, तो आप उसको सेफली 1.5-2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दवाई को। बाकी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका की पैकिंग ही बहुत ही एक्सपेंसिव और बढ़िया पैकिंग होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि इनको 2 या 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। दूसरा, आपने सवाल पूछा था कि अगर आप, मैंने ये बोला था कि टू व्हीलर को अगर चलाते हैं तो चलाने के बाद इमीडिएटली आंख को धो लें। मैंने ये नहीं कहा था कि टू व्हीलर को चलाते समय काला चश्मा लगाएं, वो कोई भी चश्मा लगा सकते हैं। आप अगर हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट को आगे से कवर कर सकते हैं वाइजर से, उससे आंख के अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और अगर आप चश्मा कोई लगाते हैं नजर का तो वो नॉर्मल चश्मा लगाएं आप, वो आप फोटोक्रोमेटिक भी लगा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, वो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज जो होते हैं वो अंदर सफेद हो जाते हैं और धूप में जाने पे काले हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि चश्मा जरूर लेकिन लगाएं, अच्छा क्वालिटी का चश्मा, यूवी प्रोटेक्ट जो करे वैसा चश्मा लगाएं, पर कई बार ये होता है जब बहुत गर्मी होती है तो चश्मा लगाते हैं तो नाक के आसपास थोड़ा पसीना जैसे आता है, फेस पे पसीना आ जाता है, तो उससे कभी कभी स्किन एलर्जी भी हो जाती है, तो इस पे क्या करें, किस तरह का सॉल्यूशन?
3: देखिए, ये सारा ना फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। चश्मे का जो फ्रेम होता है, जो मेटल फ्रेम्स होते हैं ना, कई किस्म के मेटल होते हैं, एक मेटल होता है और मेटल के ऊपर एक्रेलिक की उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप देखने में मतलब ज्यादा सुंदर लगना है, कई लोग जो है ज्यादा पतला चश्मा पसंद करते हैं, तो डंडी जो होती है उसकी वो मेटल की होती है तो वो डायरेक्ट टच करती है स्किन के साथ, उससे एलर्जी होती है। जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं कि डंडी या तो वो प्लास्टिक से एक्रेलिक से कवर्ड होनी चाहिए या एक्रेलिक की ही होनी चाहिए।
1: अच्छा।
3: तो वो जो है उससे स्किन एलर्जी नहीं होती है, और अगर होती है किसी को तो फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चश्मा बदलने के।
1: हमारी श्रोता हैं अदिति, वेस्ट दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 25 साल है। इनका प्रश्न है कि

0: आंखों के नीचे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसके लिए क्या बताएंगे आप? स्किन के लिए ही बात कर रही हैं कि आंखों के नीचे की बहुत डेलिकेट स्किन होती है।
1: डेलिकेट स्किन होती है तो ये जो है ना, अगर आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी स्किन की ड्राइनेस की है, और अगर आपको फिर भी तकलीफ रहती है कोई भी आप, तो फिर आप स्किन के डॉक्टर से मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: जी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लेकिन जनरल आईज की प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, अगर हमारे पास समय रहेगा हम जरूर उनको शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल गर्मी पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं अपने प्रश्नों को कि गर्मी में हम आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो जो आपने चश्मे का बताया डॉक्टर साहब, एक और समस्या होती है जैसे आंखों में कोई परेशानी हुई तो डॉक्टर्स जनरली स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो उसका कुछ फर्क होता है? गर्मियों में ज्यादा नुकसानदायक होती है या स्टेरॉइड्स लेने चाहिए?
1: देखिए स्टेरॉइड जो है वो किसी स्पेसिफिक अगर बीमारी ऐसी हो जिसके अंदर स्टेरॉइड्स जरूरी है वो तो जरूरी है, लेकिन स्टेरॉइड्स का हमारे यहाँ ना हमारे देश में बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर मिल जाती हैं जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए इनका। और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों में एक एलर्जी की बीमारी होती है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस, और उसको साधारण भाषा में स्प्रिंग कटार बोला जाता है। उसके अंदर आंखों में पानी बहुत आता है, खुजली होती है, बच्चे की आंखें बंद होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, और देखने में जो सफेद वाला हिस्सा है आंखों का वो तो उसमें पीलापन आने लगता है। लेकिन इन सभी चीजें किसी भी चीज से, ये बीमारी कितनी भी हो, इससे नजर खराब नहीं होती। लेकिन अगर इसके लिए जो इलाज होता है वो स्टीरॉयड यूजेज होता है, लेकिन स्टीरॉयड यूजेज हम बिल्कुल जब बहुत ज्यादा तकलीफ है थोड़े दिनों के लिए 10-15 दिन के लिए देते हैं। और बड़े कॉमनली ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो दवाई ड्राम बाण है, ये तो बस ठीक हो गए, अब इसको डालते रहो, 4-6 महीने डालते रहते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चे की जो है ये खुजली पानी तो ठीक हो जाता है, उसकी नजर डैमेज हो जाती है, उसको सफेद या काला मोतिया या दोनों हो जाते हैं और नजर हमेशा के लिए उसकी खत्म हो जाती है, और हमारे देश में हर साल कई हजार बच्चे अंधे हो जाते हैं। और यह तकलीफ जो है अक्सर ये मार्च अप्रैल से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक यह एलर्जी चलती रहती है, और जनरली 3-4 साल की उम्र से शुरू होती है और 18 साल की उम्र तक ये रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि स्टीरॉयड का यूजेज डॉक्टर के सुपरविजन के बिना और रिपीटेड कंसल्टेशन में कि बार बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है अगर आपका स्टीरॉयड का यूज कर रहे हैं। तो
0: जैसा आपने कहा कि किसी डॉक्टर ने अगर एक हफ्ता लिखा है तो वो बोले कि ठीक नहीं हुआ है तो मैं और एक हफ्ता रिपीट कर लूं, तो वो
1: रिपीट
0: कर सकता
1: ना करें जब तक आप डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट ना करें।
0: जी जी। और कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब कि उसको कैसे बंद करना है उसमें भी वो धीरे धीरे करके उसको बंद किया जाता है, ऐसा भी होता है?
1: अक्सर बहुत सारी ऐसी होती है तकलीफें, अगर इसको लंबे समय तक दिया जाए तो इसको धीरे धीरे बंद करना होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 हफ्ते के लिए दिया गया तो फिर एकदम से बंद कर सकते हैं।
0: जी आपने आई ड्रॉप के बारे में भी डॉक्टर साहब बताया था, ड्राई आईज के लिए भी, और भी स्टेरॉइड्स अगर यूज होते हैं तो वो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो हमारी ये श्रोता है, इन्होंने जानना चाहे कि आई ड्रॉप डालने के बाद कितनी देर बाद आंख खोलनी चाहिए?
1: 1 मिनट तक बंद करना ठीक रहता है, काफी रहता है। बाकी आई थिंक ये काफी यंग पर्सन है तो इनको यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स, उस पे आपके डजन्स आ जाएंगे, काफी दर्जनों आपकी वीडियो आ जाएगी, उनमें से एक हमारी बनाई हुई वीडियो भी है।
0: अच्छा।
1: राम मनोहर हॉस्पिटल से 2 मिनट की वीडियो है, तो उसको जो है जो लोग लंबे समय तक दवाई इस्तेमाल करते हैं जैसे ड्राई आईज के पेशेंट हैं या काले मोती के पेशेंट हैं, तो दवाइयां कैसे डाली जाएं, उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए और उसके साइड इफेक्ट कम से कम कैसे किए जाएं, वो सब चीजें उसके अंदर हमने दिखा रखी है।
0: जी ये प्रश्न किया था हमसे पुष्कर देवदिली जी ने, और उन्होंने अपना एज नहीं लिखी है, लेकिन आजकल तो सभी लोग फोन पे देख सकते हैं जाकर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप आरएमएल की जो ये यूट्यूब पे जाकर आप देख,
1: आरएमएल की यूट्यूब पे शायद नहीं होगा वो, या तो मेरे नाम से होगा।
0: अच्छा।
1: या फिर जो है आप हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स अगर लिखेंगे तो मिल जाएगा, या मेरा नाम लिखेंगे तो भी मेरे मिल जाएगा,
0: तो आप कोशिश कर सकते हैं। और काफी कुछ तो डॉक्टर साहब ने यहाँ भी बता दिया है। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, नमस्कार, आपका स्वागत है। जी
2: थैंक यू।
0: प्रश्न करें, नाम पहले बता दें, कहाँ से बोल रही है, कौन बोल रही है?
2: पीतमपुरा से अनीता वर्मा।
0: जी अनीता जी, बताएं अपने प्रश्न करें।
2: हाँ, एक प्रश्न है मेरा, क्या कोई भी आई ड्रॉप्स हो जैसे आज समर में आजकल फ्रिज में ही रखें या बाहर? और दूसरा सवाल है, जैसे ऑपरेशन होता है लोगों का, आई ऑपरेशन चेक टेक का, तो वो कहते हैं

0: लोग कहते हैं कि 2 साल बाद दोबारा कराओ, रिपीट कराओ, क्या ये इसमें सत्य है कुछ? बस ये दो बताइए,
1: जी
0: करना
1: जी
0: चाहिए।
1: डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आई ड्रॉप को क्या हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए गर्मियों में?
2: देखिए, फ्रिज में रखने से हमेशा अच्छा रहता है। एक तो ठंडक मिलती है जब आप आंख को डालेंगे तो वो सूदिंग होता है, दूसरा दवाई की लाइफ बढ़ जाती है। और जो दूसरी इन्होंने बात कही है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता है, कैटरेक्ट कभी भी दोबारा नहीं होता, लेकिन ये है कि जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं तो साथ में लेंस भी डालते हैं। लेंस को डालने के लिए हम जो कैटरेक्ट जो हम पूरा नहीं निकालते, उसकी एक झिल्ली होती है, झिल्ली को छोड़ दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। वो कुछ समय के बाद वो झिल्ली जो है पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है, तो उसको एक माइनर सा प्रोसीजर होता है लेजर, जो कि ओपीडी में ही हो जाता है, उससे जो है वो झिल्ली को काट के उसको साफ कर दिया जाता है और नजर दोबारा साफ हो जाती है। और उसके बाद अगर वो एक बार पूरा हो जाए तो वो भी झिल्ली दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी प्रश्न करने के लिए। और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे। प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं आंखों से संबंधित, पर हम चाहेंगे कि गर्मी में आंखों की सुरक्षा कैसे करें। अगर इस विषय पर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर मानवदीप सिंह। आप प्रोफेसर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और गर्मियों में आंखों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है, खासतौर पर इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने आंखों की बहुत अन्य समस्याओं पर भी बात की है, हमें मैसेज लिखकर भेजा है। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं उनको भी शामिल कर लूं।
1: जरूर कीजिए
0: जी। शैली जी लिख रही हैं दिल्ली से कि आंखों में काजल लगाना सही है कि नहीं, बताएं।
1: देखिए, काजल डॉक्टर्स लोग हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस पे खास प्रिकॉशन एक ये है कि एक तो काजल अगर आप लगाना ही है तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप कुछ सुरमचू वगैरह या कोई और चीज लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एक से दूसरे के साथ ना लगाएं। तो यह जो
0: मतलब
1: है,
0: अगर आपका है तो पर्सनल
1: पर्सनल है, पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। और धोने के बाद साफ सुथरा उसको, मतलब वॉश करके साबुन से धोके उसके बाद ही उसको जो है टच करें। हाँ, संक्रमण का रिस्क इससे ज्यादा रहता है। और पहले जो है हमारे यहाँ जो कुकरे होते थे या जिसको हम लोग ट्रकोमा बोलते थे, बहुत ज्यादा था, वो बहुत कम हो गया इसी वजह से, क्योंकि इसके लिए कि कंपेयर हमने चलाई है कि काजल का इस्तेमाल कम से कम करें।
0: जी, हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
0: जी। जी, आप बताएं, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: गजराज नाम है डॉक्टर मेरा।
0: जी जी, प्रश्न कर लें।
2: प्रश्न ये, मेरी जो ना आंखों में सितंबर में जो ना लेफ्ट साइड में जो ना किसी ने घूसा मार दिया था।
1: हाँ जी।
2: तो मेरे को जो है ना दिखना बंद हो गया है। दिखता है, विजन तो मेरा ठीक आता है डॉक्टर, लेकिन जो दिमाग की दिक्कत बता रहे हैं डॉक्टर, जो मैंने चेक कराया ना तो दिमाग की, तो मेरी एमआरआई हुई थी, एमआरआई के अंदर जो ना वो डॉट्स बोलते हैं उनको, कीड़ा बोलते हैं।
1: हाँ जी, सिस्टिक सर्कोसिस।
2: नहीं, कीड़े थे वो।
1: हाँ, कीड़े सिस्टिक सर्कस ही होता है वो।
2: हाँ, वो कीड़ा का बताया था। तो मैं इंदुरा हॉस्पिटल गया था।
1: हाँ जी।
2: तो डॉक्टर साहब ने जो ना मेरे को एलबेंडा लिख दी थी।
1: हाँ जी, वो सिस्टिक सर्कोसिस के लिए लिखते हैं।
2: तो फिर वो जो ना दूसरी, जब मैंने दूसरी एमआरआई कराई ना तो उसमें हट गए वो।
1: हाँ जी।
2: लेकिन मेरी रोशनी वापस नहीं आई है।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब ये आंख की जो आंख जो है वो, मैं आपको बताऊं कि देखने का काम नहीं करती। आंख केवल फोटो खींचती है, फोटो खींच के दिमाग को, मस्तिष्क को भेज देती है। तो यह जो आंख से मस्तिष्क तक जाने की जो चीज है, जो नस है वो, या जो दिमाग का हिस्सा है जो देखने का काम करता है, असल में अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो आंखें अगर बिल्कुल ठीक भी हों तो भी आदमी देख नहीं पाएगा। क्योंकि आंख का काम सिर्फ फोटो खींचना है, देखने का नहीं है। देखने का काम मस्तिष्क का है और मस्तिष्क तक फोटो पहुंचनी भी बड़ी जरूरी है।
0: जी।
1: तो आपके, मुझे जो लगता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कस की वजह से आपकी जो नस वो सूख गई है, तो इसका इस वक्त कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी मरीज को अगर उसकी नस सूख गई हो, उसकी वजह से नजर खत्म हुई हो, तो वो अपने डेथ के बाद नेत्रदान कर सकता है और दूसरा आदमी उनके नेत्रों से देख सकता है। लेकिन वो खुद किसी और के नेत्र लेकर जो प्रत्यारोपण के बाद उसकी नजर नहीं आ सकती है।
0: और ये हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं जिन्होंने मैसेज किया है, अवधेश हैं औरंगाबाद बिहार से लिख रहे हैं। आई हेमरेज क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं।
1: देखिए, आई हेमरेज ना मेनली दो किस्म का मैं बताना चाहूंगा, या रादर तीन किस्म का होता है। जगह जगह की बात है कि कौन सी जगह पर होता है। एक तो बिल्कुल बाहर लगता है, जैसे किसी के बच्चे का नाखून लग गया, छोटी मोटी चीज है, वो बाहर लग गया, उसके लिए कोई इलाज नहीं करना होता, अपने आप वो लाली जैसी देखने में होती है और थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाते हैं अपने आप, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। दूसरा होता है हेमरेज, जो आंख के पुतली के पीछे इमीडिएटली होता है, वो चोट वोट लगने से होता है अक्सर, और वो भी उसका इलाज थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा जो हेमरेज है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो होता है विट्रस हेमरेज, यानी कि पीछे के हिस्से का, लेंस के भी पीछे का हिस्सा, जो पर्दे से जो ब्लीडिंग होती है, यह ज्यादातर सबसे ज्यादा ये मधुमेह या डायबिटीज की वजह से होती है। और इसके अलावा और भी कई बीमारियां होती है, ईल्स डिजीज वगैरह होती है और कई किस्म की बीमारियां होती है जिससे यह हो सकता है। इसमें अगर यह अपने आप जो सिस्टम ईश्वर ने बनाया है उससे 10-15 दिन के अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, थोड़ा हेमरेज हो, तो 15-20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अक्सर इसका ऑपरेशन करके ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, उसके निकाले बिना आदमी को नजर नहीं आता। तो यह सीरियस बात होती है और इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं, सभी नेत्र विशेषज्ञ भी इस काम को नहीं कर सकते।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, अपने का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है।

0: कई बार लोगों से हमने सुना है कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, रिकवरी स्लो होती है, या क्या कारण होता है कि लोग ये सोचते हैं, और ये धारणा सही है कि नहीं?
1: देखिए, गर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, वैसे आजकल लोगों के पास, सबके पास रिसोर्सेज, कूलर है, एसी है, बात यह है कि कुछ दिन तक, क्योंकि आंख जो है, आंखों को थोड़ा पानी नहीं आंख पे डालना होता ऑपरेशन के बाद, तो थोड़ा नहाने वगैरह, सर धोने वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती
0: अच्छा,
1: है,
0: तो गर्मी
1: थोड़ी गर्मी महसूस होती है, गर्मी से आंख में पसीना आ जाता है, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आप घर के अंदर रह सकते हैं, आपके पास टूल और एसी है, तो इसके लिए कोई ऐसी खास समस्या नहीं है।
0: जी जी, हमारे एक साथ श्रोता फोन लाइन पर हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी,
2: भारतभूषण बोल रहा हूँ जयपुर नगर से।
0: जी जी, आप अपना प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब, मैंने ऑपरेशन करवाया कैटरेक्ट का।
1: हाँ जी।
2: तो इसने जो दवाई दे रखी है डॉक्टर साहब ने, तो ये थोड़ा जलन कर दी।
1: हाँ जी, एंटीबायोटिक और
2: स्टीरोइड तो
1: नहीं, वो तो होगा ही होगा ऑपरेशन के बाद, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक और स्टीरोइड तो एक महीने तक देते ही हैं, सभी देते हैं।
2: अच्छा,
1: तो नॉर्मल है, अगर आप उससे जलन वगैरह कुछ होती है तो उसको बर्दाश्त ही करना होगा। बस
2: अच्छा,
1: आप आंख की दवाई डाल के, एक तो आंख दवाई को फ्रिज में रखें, उससे जलन कम होगी, दूसरा आंख जब डालते हैं दवाई तो आप एक मिनट तक आंख को बंद रखेंगे, तो उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ कम रहेगी।
2: ठीक है सर,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और उम्मीद है आपको जवाब भी सही मिल गया। और डॉक्टर साहब, विकास हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने लिखा है, मेरी वाइफ की उम्र 24 वर्ष है, आंखों में बहुत पानी आता है, इसके लिए क्या करें, अभी कुछ टाइम से ऐसा आ रहा है। वैसे आपने बताया है, बहुत सारे प्रश्न है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेती हूँ। कांता गुप्ता जी ने लिखा है उज्जैन से कि मोबाइल देर तक देखने पर आंखों का प्रेशर बढ़ता है क्या?
1: ऑपरेशन प्रेशर तो नहीं बढ़ता, लेकिन ज्यादा मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता, कई और किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पेशली जिसके अंदर आती है ड्राइज आई और चश्मे का माइनस नंबर का बढ़ना, तो इससे थोड़ा सा परहेज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा
0: जी।
1: और अगर आपको करना ही है यूज, तो थोड़ा आंख से दूर करके रखें उसको, नजदीक, बिल्कुल नजदीक ना लाएं।
0: केएल कुमावत जी सीकर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा नींद आना भी आंख की बीमारी का संकेत
1: नहीं
0: होता
1: जी,
0: है?
1: इसके साथ कोई संबंध नहीं है।
0: मेरे चश्मे का नंबर है 20, क्या उससे देखता हूँ लेकिन साफ नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँ? ये अभिषेक गुप्ता है लेंसडाउन उत्तराखंड से।
1: देखिए, अगर इतना ज्यादा नंबर अगर होगा तो जो इमेज बनती है आंख के अंदर उसका साइज छोटा हो जाता है, तो इसके लिए इतने हाई पावर चश्मे से बहुत ही मुश्किलें होती हैं। इसके लिए एक तो स्पेशलाइज लेंसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई इंडेक्स लेंसेज, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन वो उनसे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो यूज करना बेहतर होता है, उनसे क्वालिटी ऑफ विजन बहुत बेहतर मिलेगी चश्मे की बजाय। और अगर आप चाहें तो कुछ ऑपरेशन भी होते हैं चश्मे को कम करने के, लेकिन वो काफी रिस्की होते हैं इतने हाई पावर के लिए, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से देख सकते हैं कि अगर आपकी आंख फिट है ऑपरेशन के लिए तो आप वो ऑपरेशन भी करवा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्ट लेंस आपने बताया, तो अगर नंबर किसी का है तो वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकता है?
1: इतने हाई नंबर के लिए तो कॉन्टेक्ट लेंस सबसे अच्छी चीज है।
0: अच्छा, और अगर किसी का नॉर्मल है, जैसे हम लोग रीडिंग के लिए चश्मा लगाते हैं, तो हम अगर रेगुलर यूज में चाहें तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं, कोई नुकसान तो नहीं होगा?
1: रीडिंग के लिए जनरली कॉन्टेक्ट लेंस नहीं यूज करते, लेकिन जो डिस्टेंस का नंबर होता है उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, सब दुनिया करते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें।
0: तो गर्मियों में कोई खास देखभाल करनी होती है कॉन्टेक्ट लेंस जो लगाते हैं?
1: आजकल जो कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं वो पहले होते थे हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज, तीन तीन चार चार साल लगते थे, उनको क्लीनिंग वगैरह की एक्सटेंसिव जरूरत होती थी। आजकल जो लेंसेज आते हैं इनके लिए कोई ऐसी खास केयर की जरूरत नहीं होती है। द ओनली थिंग इज कि आप ज्यादा ये देखें कि अगर आपको कॉन्टेक्ट लेंस लगा है तो आपको सोना नहीं है कॉन्टेक्ट लेंस लगा के, और अगर आपकी आंख में कुछ धूल मिट्टी चली गई है, आप आंधी वांधी आई है, तो उस एकदम से उसको निकाल के और कॉन्टेक्ट लेंस को भी साफ कर लें, आंख को धो लें, वो बहुत जरूरी है। आंख को उंगली से रगड़ना नहीं है अगर आपकी आंख के अंदर कॉन्टेक्ट लेंस है, वो बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आपकी आंख के अंदर जख्म होके हमेशा के लिए नजर के ऊपर असर हो सकता है।
0: जी, तो बहुत ध्यान रखना है और हाइजीन
1: को बिल्कुल मेंटेन करना है, और अगर आपको धूल मिट्टी गई है तो एकदम से आंख को साफ करना है, कॉन्टेक्ट लेंस को भी साफ करना है।
0: हमारे श्रोता हैं जो फोन लाइन पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे। हेलो
3: मैडम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार जी
3: डॉक्टर साहब, मैं आरपी पेशेंट हूँ, दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जाहिद नाम है मेरा।
1: किस चीज के पेशेंट है?
3: आरपी
1: के। अच्छा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ जी
3: हाँ जी हाँ जी सर, तो कुछ हमारे लिए भी है कुछ डॉक्टर साहब इलाज है कुछ
1: का? देखिए, इसका इलाज तो अभी मैं कहूंगा नहीं है, बेसिकली इसके अंदर अभी कुछ ऑपरेशन चिप्स वगैरह कंप्यूटराइज शुरू हुए हैं, वो

0: वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो गए, लेकिन अभी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं और उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे भी हैं। तो इसलिए अभी उनका अभी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमारे देश के लिए अभी नहीं है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुनाल सिंह हमें लिख रहे हैं, मैसेज करके भेजा है उन्होंने कि मेरे दादा की उम्र 73 इयर्स है और मुझे पूछना है कि उनको 2020 में कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उनकी वेन्स वीक हैं जिसकी वजह से उनका विजन वापस नहीं आ पाया। अब 4 साल हो चुके हैं इस बात को और उनकी आंखों में पानी बहुत आता है और आई प्रेशर भी ज्यादा है, तो ये समस्या का वो निदान चाह रहे हैं।
0: देखिए, अगर आपके जैसे जो आप वेन्स जिसको कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो वेन्स होगा, वो ऑप्टिक नर्व ही होगा, यानी कि आंख की नस जो है, क्योंकि वो आंख के अंदर, ये एक खास बात नहीं है, बड़ी आम बात है कि जब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है तो प्रत्यारोपण के बाद आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे नस सूख जाती है। अगर एक बार नस सूख जाए तो फिर दुनिया में किसी इलाज से नजर वापस नहीं आती, और अगर नस ही सूख चुकी है तो थोड़ा प्रेशर फिर ज्यादा रहता भी है, तो उसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। दवाइयां जितनी कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना कम साइड इफेक्ट होंगे और कम जो है ना पानी आएगा। अगर नजर पूरी खत्म हो चुकी है तो दवाइयां इस्तेमाल ना करें, अगर नजर है थोड़ी बहुत फिर दवाइयां जरूर इस्तेमाल करें, उसमें बिल्कुल ही आपको गलती ना करें, क्योंकि अगर आपकी नजर है आपके दादाजी की और अगर वो प्रेशर जितना भी मेंटेन कर सके उसको जरूर करें, लेकिन अगर आपकी उनकी नजर बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो फिर दवाइयां इस्तेमाल करके साइड इफेक्ट और पानी वगैरह के सिम्टम्स उनको मत दें।
1: तो अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मानवदीप सिंह हमारे साथ हैं। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेज हैं, सबको लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें जनरल समर्स के बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं, आंखों की तकलीफ है, तो मैं जल्दी जल्दी नाम लूंगी इन सबके क्योंकि ये शामिल हुए हमारे कार्यक्रम में, इनका धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी। साथ ही साथ चलने से पहले, क्योंकि इन सब बीमारियों की जड़ होती है हमारा उचित खान पान ना हो या हम आंखों की एक्सरसाइज ना कर रहे हो, तो आप ये जरूर बताइएगा कि क्या खाएं जिससे कि आंख स्वस्थ रहे और कुछ एक्सरसाइजेस हो तो वो जल्दी जल्दी बता दें। मैं नाम लेती हूं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है, इसके अलावा हमें लिखा है मनदीप जी ने रोहतक से, राहुल ने न्यू दिल्ली से, सुशील ठाकुर जी का तो मैंने लिया था प्रश्न, उन्हें दोबारा से किया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का भी लिया था प्रश्न, सीतामढ़ी बिहार से प्रकाश कुमार जी ने लिखा है, इसके अलावा लिखा है हमें हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से वाल्मीकि मंदिर, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, लिखने वाले का नाम मुझे जोगिंदर सिंह इन्होंने लिखा है, आलोका जी ने लिखा है हमें नोएडा से, और इसके अलावा हमें लिखा है किशन लाल जी ने, इन्होंने अपनी उम्र भी लिखी है 75 ईयर्स। इसके अलावा प्रेमपाल सिंह ने दिल्ली से हमें प्रश्न किया है, ये सारे ही प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। सरिता जी ने मेरठ से, और इसके अलावा सिधौली सीतापुर से यासीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी प्रश्न किया है। सुरेश पाल जी ने हमें प्रश्न किया है दिल्ली सुल्तानपुरी से, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न, अभी समय हमारे पास नहीं बचा है सर, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप हमें उचित देखभाल अपनी आंखों की और खान पान और एक्सरसाइज पर बताएं।
1: मैं सबसे पहले ये बता इसमें से ज्यादातर जो सवाल हैं जो मैं देख पा रहा हूँ तो पर्सनल है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सवालों का जवाब देने का कोई हम दे नहीं पाते हैं कि उसके लिए, क्योंकि चेकअप की जरूरत होती है। तो आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को जाके दिखाएं। और दूसरा एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो किसी काले धब्बों के बारे में था, आंख के आगे काले धब्बे नजर आते हैं, तो वो जो है चीज 98-99% जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये उम्र के साथ अपने आप होते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन 1% जो केस होते हैं, 1 या 2% उसमें प्रॉब्लम जिसमें होती है वो बहुत सीरियस होती है। इसलिए ये सभी लोग जाके डॉक्टर को दिखाएं जरूर, और खास तौर पे अगर आंख के आगे किसी को फ्लैश भी नजर आती है कि लाइट नहीं है फिर भी लाइट नजर आती है तो उसको जरूर दिखाएं, बेशक 99% चांस ये है कि वो बिल्कुल ठीक रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा
0: जी।
1: और बाकी आप खान पान के बारे में बताया कि गर्मी में खास तौर पे हाइड्रेशन को ध्यान रखें, पानी पिए, शिकंजवी बना के पिए, नमक जो है आजकल फैशन बना हुआ है कि नमक कम लेना है, लेकिन गर्मी के अंदर नमक की बहुत अहमियत होती है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसीलिए किया था क्योंकि हमारे जो गर्म देश होते हैं इनके अंदर नमक की हमें बहुत जरूरत रहती है। तो शिकंजवी बना के पिए, पानी पिए, ठंडा पानी पिए, और आंखों को धोएं, आंखों का बाहर जाएं तो आंख के साथ आंख को धोएं, ठंडा रखें, आंख बर्फ लगाएं आंख के ऊपर, ये सब चीजें हैं।

0: ध्यान रखे। और खाने में जहां तक सवाल रहता है कि आजकल पीले फल हैं, आम वगैरह हैं, ये सर्दी में गाजर आएगी, तो ये जो चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दूध और अंडा, ये सब चीजों के अंदर जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं आंख के लिए, आंख की सेहत के लिए, वो अच्छे होते हैं। बाकी आंख के लिए आपने एक्सरसाइज के लिए पूछा, जनरल एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आंख के लिए बिल्कुल अच्छी रहती है। उन्हीं से जो है आंख के अंदर प्रेशर भी कम रहता है और आंख की सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन आंख के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज जो है उसका कोई नहीं होती है, अनलेस की कोई खास किस्म की बीमारी होती है, जैसे स्क्विंट वगैरह में कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, अदरवाइज आंख की कोई खास एक्सरसाइज, स्पेशल एक्सरसाइज नहीं होती है।
1: जी, डॉक्टर साहब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे प्रश्नों के आपने जवाब दिए। समय कम पड़ गया हमें आज के प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। और खास धन्यवाद डॉक्टर मानवदीप सिंह जी का जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आप यहां आए, समय निकालकर इतने प्रश्नों का जवाब दिया, स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी, शुक्रिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हां जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम ते की हाल चाल ने तुहाडे सारयां दे। एक बारी फिर तो स्वागत है जी तुहाडा सारयां दा प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच बड़ी हुई हां जी। जी हाँ ते तुसी भी जे इस प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहते हो गलबात करना चाहते हो मेरे नाल ते नाल ही सुनना चाहते हो अपनी पसंद का कोई गीत ते तुसी फटाफट तो 0181 43 174 नंबर डायल करना है ते फटाफट तो मेरे नाल गलबात करनी है। ते चलो जी अज गल करांगे जी थोड़ी बहुती ट्रैफिक सिग्नल्स दे बारे विच ते थोड़ियां बहुतियां इदां ही चलदियां फिरदियां गल्लां थोड़ी जी फनी कन्वर्सेशन ते जानांगे जी तुहाडे की विचार ने। खैर फिलहाल देखदे हां जी पहली कॉल जिहड़ी ओह किहदी लगी है। हैलो
1: वंदना मैम सत
0: श्री अकाल जी कौन बोल रहे हो?
1: मैं कुलदीप सिंह बोलदा पिंड लादियां खोर दे जिला लुधियाना।
0: लै मैनूं लगदा कि जदों मैं आनी आ ना ते उस दिन तुहाडी कॉल ही पहली हुंदी है।
1: मैम उदन गैप पै गया उदन मैं थोड़ा जिहा लेट हो गया जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक
1: है उदन दा गैप पै गया मैम फिर बाद च कॉल लगी नहीं बड़ी ट्राई लाई जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम चा तुहाडा।
1: हां जी मैम थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है।
0: अच्छा ठीक है अच्छा मैनूं एक गल दसो अज कल ट्रैफिक बहुत ज्यादा सड़कां दे उत्ते ते हॉर्न सब तो ज्यादा केड़े जड़े व्हीकल ने मारदे ने गड्डियां के बाइक्स के ऑटो वाले?
1: मैम जेड़े ऑटो वाले ए बाली काली निकल आउंदे आ
0: स्कूटी चलांदे हो इंडिकेटर दिता जांदा कि हाथ ज्यादा वरतदे हो फिर?
1: मैम इंडिकेटर भी दे दईदा जी
0: ते पक्का करन लई हाथ भी दे दईदा। अच्छा एक चीज होर जिहड़ी बड़ी कॉमन हुंदी है ना जदों असीं अजकल मोबाइलां दे उत्ते कहिंदे कि मैं 5 मिंट च आया ते 5 मिंट जिहड़े ने ओह किस तुहाडे हिसाब दे नाल किन्ने मिंट हुंदे ने जदों असीं किसे नूं कहिंदे 5 मिंटां च आए? मतलब वही है कि जे घर दे विच किसे फंक्शन ते जाना ते बीबियां नूं ए कह दियो कि 5 मिंट चाहे ते मतलब घंटा पक्का है।
1: हां जी हां जी
0: ठीक है ठीक है। अच्छा गाना केड़ा सुनोगे कुलदीप जी? कुलदीप जी दी लगी है जी कॉल पहली ते उन्होंने मैनू कहा कि अज तुसी अपनी चॉइस दा गाना लाओ ते गाना मैं अपनी चॉइस दा ला दिंनी आ ते नाल नाल मैं नंबर भी रिपीट कर दवां कि 0181 43 174 दे तुसी कॉल करनी है तुसी ते वेट कर रही हां मैं तुहाडी कॉल दी। फटाफट तो सुनदे आ इस प्रोग्राम दा पहला गीत जड़ा कि मेरा भी फेवरेट ही है क्योंकि एनर्जी ते वाइब ही इन्नी हुंदी है ना हैलो जलंधर दी कि मैनूं इदां लगदा है कि जी नचण टप्पण वाले गाने होने चाहिए ने ते जदों गल आंदी है नचण टप्पण दी ते आंदा है जी पंजाबी भंगड़ा पहला ते फिर लाने आ जी कोई तड़कता पड़कता गीत। इंजॉय करो मेरे नाल ते फटाफट तो नंबर डायल करो

0: सुहान जी, मैं क्या जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, अद्दाब, मेहरबान, कदरदान। 102.7 MHz ते प्रोग्राम लैके हाजिर हो गए हैं जी युवाणी। दोस्तों, आकाशवाणी जलंधर का एक केंद्र है, ते मैं हाँ तुहाडी दोस्त आरजे रितिका,
1: ते मैं हाँ तुहाडी आरजे दोस्त खुशी। ते अज बहुत ही सोहनी शाम चढ़ी है, ते असीं तुहानू मिलन लई, तुहाडे नाल गल्लां बातां करन लई हाजिर हो चुके हैं तुहाडे फेवरेट प्रोग्राम युवाणी दे विच।
0: जी दोस्तों, जिवें कि हुणे खुशी ने दस्या कि असीं हाजिर हो गए हां लैके तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम युवाणी। ते युवाणी दे विच जदों रौनकां लगदियां ने तां वक्खरियां वक्खरियां चीज़ां दे पिटारे भी खुलदे ने, इनफॉर्मेशन भी भरपूर हुंदी है, ते उहदे नाल नाल एंटरटेनमेंट दी तां गल ही ना करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट तां पूरी पूरा पूरा भरपूर हुंदा।
1: बिल्कुल रितिका, ते असीं गल्लां बातां करनी है, उस तो पहला असीं दे दिंदे हां अज दे सैगमेंट दा वेरवा। ते दोस्तों, अज तुसीं सुणोगे वर्ड एक्सप्रेस, जिहदे विच इक मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड जिहड़ा कि तुसीं बहुत घट सुनिया होना है, उस वर्ड बारे असीं तुहानूं दस्सांगे। उस तो बाद दिमागी दंगल होएगा, दिमागी दंगल विच असीं तुहाडे तों बुझारता पुछांगे, कुछ क्वेश्चनस पुछांगे, तुसीं उन्हां दे आंसर सानूं देने हैं 0181 23 42 174 ते कॉल करके, या फिर फेसबुक मैसेंजर दे आकाशवाणी पेज ते जाके तुसीं सानूं मैसेज करना है। उस तो बाद लास्ट सैगमेंट होएगा
0: वखरा स्वैग। जी हाँ दोस्तों, ये तो सब तो ज़्यादा फेवरेट है साडे यूथ का सैगमेंट, क्योंकि जिथे यूथ है ना उन्हें अपने ड्रैसअप नू लैके अपने आप नू कूल बनाने लिए, अपने आप नू वखरा दिखाने लिए कुछ ना कुछ आइस्थैटिक, कुछ ना कुछ वधिया, तो कुछ ना कुछ क्लासी जिहड़ा चाहिए होंदा है ना कुछ ही।
1: बिल्कुल,
0: तो इन चीज़ों के लिए ही तो बनया है जी वखरा स्वैग। तो वखरा स्वैग सैगमेंट भी सुनना नहीं भूलना है तुसी, जिथे तुहानू इनफॉर्मेशन देवांगे, बहुत सारी चीज़ें दसांगे किवें तुसी अपने आप नू वधिया ते बहुत ज़्यादा कूल बना सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। तो उस तो पहला असं एक गल कर लें कि अज खास की है। तो दोस्तों, अज का दिन जो कि खास है वह है जी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टूला। जी दोस्तों, ये दिन हर साल 23 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है लोगों के प्रति, लोगों इस दिन के प्रति जागरूक करवाना, जिवें कि मैं दस्या इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टूला। इस दिन का मुख्य मकसद की है, खुशी दसोगे साढ़े दोस्तों?
1: बिल्कुल, इस दिन का मुख्य मकसद है लोगों नू अवेयर कराना, लोगों नू जिहड़ी औरतां दे नाल संबंधित, मतलब जदों औरतां किसी बच्चे नू जन्म दिंदियां ते उस दे नाल संबंधित उन्हां नू जदों पेन हुंदी है या फिर उस टाइम ते जिहड़ी दिक्कतां हुंदियां उन्हां नाल अवेयर कराना ही इस दिन का खास मकसद है।
0: ते खुशी, ये एक्चुअल च हुंदा की है पता है तुहानू? मैं दसदी हाँ, ये एक ना बहुत ही ज़्यादा बहुत गंभीर समस्या है जो आम तौर पर जिहड़ियां लेडीज़ ने उन्होंने लंबे समय तक चाइल्ड बर्थ की डिफिकल्टीज़ जिहड़ियां सामना करने पैंदियां ने उन्हां दे कारण हुंदियां ने। ते इस विच कई बार उन्हां नू कई प्रॉब्लम्स जिवें उन्हां दे बॉडी पार्ट्स दे विच कई होल्स बन जाते हैं, कई बार उन्हां नू यूरिन करके भी बहुत प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, ते ओह ये सारी डिफिकल्टीज़ नू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दे नाल सहिंदियां ने। लेकिन लोगों के लिए सिर्फ वो चीज़ जिहड़ी हुंदी है वह जेकर आपां मामूली तौर पर गल करिए तां एक आम चीज़ समझ लेंदे हैं, बट एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम हुंदी है जो अगे जाके बहुत घातक सिद्ध हुंदी है, क्यों है ना?
1: बिल्कुल, इस दे जिहड़े प्रभाव ने शरीर विच दर्द हुंदा है, इन्फेक्शन हुंदा है, या फिर मनोविज्ञानिक तनाव हुंदा है, या समाज वल्लों अनदेखी कर देंदे ने, आत्मविश्वास विच घाट हो जांदी है। बट सानूं लोड़ है कि असीं औरतां दी इस दिक्कत नूं समझिए, उन्हां दा सपोर्ट करिए, ते उन्हां नूं उचित देखभाल भी दईए।
0: ते दोस्तों, इह दिन इसे लई मनाउणा जिहड़ा है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन विच औरत नूं इक तां इह गल दा लोकां नूं संदेश दित्ता जांदा है कि औरत नूं ਰੱਖਿਆ ਜਨਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫਿਸਟੂਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ,
1: ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਰਿਤਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ।

0: मैं अगला टंग ट्विस्टर है ना रितिका, अगला टंग ट्विस्टर मैं थोड़े तो पूछनी हाँ कि ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची या ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट
1: ऊंट की
0: की पीठ
1: पीठ ऊंची
0: ऊंची
1: या
0: या
1: ऊंट
0: ऊंची
1: की
0: पूंछ
1: पूंछ
0: ऊंट
1: ऊंट
0: की।
1: की। दोस्तों असी दोनों ने तो रिपीट कर लिया, तो सानू ईजी लग रहा है, पता नहीं तुहानू डिफिकल्ट लगता है या ईजी लगता है, असी तुहाडी वेट कर रहे हैं। सानू कॉल्स ते मैसेंजर के उपर जवाब भेजो, असी भी उड़ीक कर रहे हैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर

नमस्कार, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। शाम ते 7 बजे ने ते वेला हो रहा है एफएम न्यूज हेडलाइंस दा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20

नमस्कार, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दी आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। रात दे 8 बज चुके ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वख-वख सरकारी विभागां अते संगठनां विच नवनियुक्त नौजवानों 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडे। कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकां दे जीवन नूं बेहतर अते आसान बनाउण दा इक महत्वपूर्ण साधन है। पंजाब विच रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला विच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स विच मुख प्रशासकीय अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किते। वनज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आलमी पद्धर उत्ते उथल पुथल दे बावजूद भारत दी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है अते बरामद विच बेमिसाल वाधा होया है। इंडियन ऑयल ने कहा, देश विच पेट्रोल अते डीजल दी सप्लाई स्थिर है, इदन दी कोई कमी नहीं है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अत दी गर्मी दे मद्देनज़र पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां अते कॉलेजां दा समां बदलण दा ऐलान। नवें समें मुताबक कामकाज दा समां सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर बाद 1:30 बजे तक होवेगा। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा वल्लों 11वें कन्वोकेशन समारोह दा आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों नूं प्रगतिशील समाज दे निर्माण विच योगदान पाउण लई कीता प्रेरित।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहने ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो आया, तुसी भी लवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो, pmsuryaghar.gov.in।

0: ओ रीमा, सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदों मन्निया जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा।
1: भारत सर...

हाँ जी, मैके जी प्रोग्राम नेटवाणी सुन रहे हो ते बहुत सारी मैके जी इंटरनेट ते वायरल ट्रेंडिंग वीडियोस ते पिछे दी जानकारी आप साझा कर रहे हो। दोस्तों गल करिए सरकार दी, ता सरकार आए दिन नागरिकां दी हिफाजत वास्ते, सहूलियत वास्ते बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारियां साइट्स जिहड़ियां हैं वह लॉन्च कर रही है। इस दे विच ही एक होर नाम जुड़ चुका है मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसका नाम है जीवन, यानी कि जॉइंट एल्डरली इंपावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क, जो कि भारत सरकार वालों कल यानी कि 22 मई नूं लॉन्च किया गया है। हुण गल करिए इस एप्लीकेशन की, किस एप्लीकेशन इस ऐप का सानू की फायदा है। दोस्तों तुसी घर बैठे ही अपने लाइफ दे जड़े है जड़े तुहाडे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स ने ओह इत्थे जमा करवा सकदे हो। हुण इस तरह दे तां होर वी बहुत सारे ऐप्स ने सरकार वल्लों लॉन्च कीते गए, ते फिर इह किस तरह वखरा है। दोस्तों बजुर्गां दी सहूलियत वास्ते इह ऐप जड़ा है लॉन्च किया गया है, जिस दे विच सरकार द्वारा दित्तियां जाण वालियां हर एक स्कीम जिहड़ियां है इस दे विच मौजूद ने बजुर्गां दी भलाई वास्ते। इस नाल ही नाल एमरजेंसी सपोर्ट भी दित्ती जांदी है पूरी इस ऐप दे विच। ते गल करिए साडे बजुर्गां दी, जिन्हां प्रति आए दिन असी खबरां देखदे हाँ लापरवाही दियां, उन्हां दे नाल बरतियां जाण वालियां, जिथे उन्हां नूं बुढ़ापे करके जिहड़ा है आना जाना मुश्किल हो जांदा है, ते अपने बहुत सारे काम जिहड़े है नहीं कर पाते, ते हुण घर बैठे बैठे इस एप्लीकेशन जीवन दे राहीं उह सारे काम कर सकदे ने। ते सरकार ने जिहड़ा है इस ऐप राहीं बजुर्गां दी मदद कीती है, नाल ही नाल समां वी बचाया है जो कि सेवा केंद्रां दे विच जा के लगदा है। बस हुण कोई भी सरकारी काम होए तो इस मोबाइल ऐप नूं मोबाइल ते डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर ते जाके, ते बस फिर काम घर बैठे बैठे ही हो जाने। मैं कहिंदा डिजिटल जमाना है, थोड़े जे एडवांस हो टेक्नोलॉजी के नाल चलना बहुत जरूरी होंदा है। सियाणे कहिंदे है जेकर समय के नाल चलिया जाए तो ही उस इंसान नूं सियाणा कहा जाता है। ते लो जी, एक प्यारा जिहा गीत पेश करन जा रही हाँ तुहाडे सारिआं वास्ते, ते इस तों बाद मैं कहा जी जल्दी मिलदे हाँ, क्योंकि प्रोग्राम नैट वाणी दे विच हुण समा वी जिहड़ा है थोड़ा ही बाकी है, पर इनफोरमेशन बहुत सारी है, ते मैनूं हुण तुहाडे वास्ते एक प्यारा जिहा गीत जिहड़ा है ओह मिल गया है, ते सतिंदर सरताज दी आवाज़ दे विच पेश करन जा रही हाँ जी।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी नेटवानी प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी ते मैं कह जी गलबात हो गई साइंस बारे, विज्ञान बारे, खोजा बारे, सेहत बारे, रेसिपीज बारे। तो इस दे नाल ही ना तुहानू हुण गल दस दईए फैशन इंडस्ट्री की कि अजकल की कुछ लेटेस्ट चल रहा है फैशन इंडस्ट्री की दुनिया के। दोस्तों गर्मी का सीजन आ चुका है तो नाल ही वापस आ गया है ये फैशन, वो ट्रेंड जिहड़ा कदे साढ़े मापियां की जवानी की जिहड़ी है शान सी। कुछ आइडिया तो हो गया। जी हाँ, गल कर रही हाँ मैं बल बॉटम जीन्स की, उही खुले पैंचों वाली जीन्स जिहड़ी चलन नाल ही स्वैग दिंदी है। अजकल कॉलेजों तो लैके कैफे तक हर कोई इस रैट्रो स्टाइल नू जिहड़ा है वेयर कर रहा है, जो कि मॉडर्न टच भी दिंदी है ते नाल ही नाल इसनू कैरी करना आसान है। बैल बॉटम दे दोस्तों सब तो खास गल दसीए तां कॉम्फी ते है, नाल ही नाल क्लासी है। इस दे नाल ही नाल ए तुहानू जिहड़ा है ना एक एयरी फील दिंदी है। तो इस दे नाल ही बैल बॉटम जीन्स ना जदों वेयर करते हाँ तो साडी हाइट भी जिहड़ी है ना एक इल्यूजन इफेक्ट जिहड़ा है पैदा हुंदा है, जिस नाल हाइट जिहड़ी है बंदे दी थोड़ी लंबी लगती है। तो फैशन इंडस्ट्री की भी गल मैं कह जी दस दी, तो अपनी वार्डरोब अपडेट कर लो जो बैल बॉटम मिस है। तो मैं कह जी बैल बॉटम कल छुट्टी वाला दिन है, कल ही जाके लो। तो फैशन के नाल जिहड़ा है अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस नाल ही मैनू यानी कि अपने दोस्त आर्चे नेहा रलहन हुण दिओ इजाजत। उम्मीद करती हाँ प्रोग्राम नैट वाणी तुहानू पसंद आया होएगा। तो जल्द मिलते हैं तुहानू अगले प्रोग्राम जिसका नाम है दिल चाहता है। तद तक इंजॉय करो प्रोग्राम का आखिरी गीत, आवाज़ है जी बी प्राक दी। सारे ही दोस्तों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का आनंद मानने वास्ते।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। रात दिन 9 बज चुके ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक आलमी रणनीतिक भाईवाली विच निरंतर प्रगति ते सुरक्षा नाल संबंधित मुद्दियां ते चर्चा कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वक-वक सरकारी विभागां दे 51,000 तो वध चुने हुए मुलाजमां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब विच 19वां रोजगार मेला अज रेल कोच फैक्टरी कपूरथला अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला विखे करवाया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड विच एक नवे गैस बेइंग पे जोन का सफलता नाल पता लाया है। व्यापार अते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने अज कहा है कि भारत आलमी उथल पुथल के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास देख रहा है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों अत दी गर्मी दे मद्देनज़र पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां, स्कूलां अते कॉलेजां दा समां बदलण दा ऐलान। नवे समें मुताबिक कामकाज दा समां सवेरे 7:30 तो दोपहर बाद 1:30 तक होवेगा। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा वालों 11वें कन्वोकेशन समारोह करवाया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों नूं प्रगतिशील समाज के निर्माण विच योगदान पाण लई कीता प्रेरित। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वल्लों सिविल सर्जना नूं गर्मी कारण होण वालियां बीमारियां लई तैयार रहन अते मैडिकल सप्लाई यकीनी बनाउण दे निर्देश जारी। मोहाली दी विशेष अदालत ने जलंधर स्थित इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वल्लों गिरफ्तार इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी दे सकत्तर अजय सहगल दी मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच 27 मई तक ईडी रिमांड उत्ते भेजिया। इस सन हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल चाहता है।

महफिल अजीब है ना, ये मंजर अजीब है, जो उसने चलाया वो खंजर अजीब है, ना डूबने देता है ना उभरने देता है, उसकी आंखों का वो समंदर अजीब है। FM 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन के तहत तुसी ते बने होए अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। सारे ही दोस्तों दा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। दोस्तों प्रोग्राम दिल चाहता है जिस विच हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी फरमाइश जिहड़ी है तुहाडी ओह पूरी कीती जांदी है, ते अज शनिवार दी रात केहड़े गीत सुनना चाहुंदे हो मैनूं दस्सो व्हाट्सएप नंबर ते, जो कि है 9855101027। अपनी फरमाइश तो भेजनी है, इस दे नाल ही नाल फिल्म दा नाम भी लिख के भेजना है, ते बस फिर प्रोग्राम दे विच शिरकत किवें करनी है इस बारे तो मैं तुहानू दस दिता है, ते फिर छेती छेती फोन मिलाओ, मैसेज करो। तद तक प्ले करन जा रही हां तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम दा पहला गीत, जिसनू आवाज़ दित्ती है जी सोनू निगम ने, फिल्म मैं हूं ना।

दोस्तों गुजरात गांधीनगर तो नमस्कार लिखे भेजी है प्रवीण सोनी पूजा पायल जूली ते जगदीश जी ने लिखते ने किसी भी गीत विच शामिल किया जाए इस दे नाल ही नाल गाओ नथाना पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता ते गीता भी प्रोग्राम दे विच शिरकत कर चुके ने मैसेज राही। पिंड हांडी खेड़ा जिला सिरसा तो राधे श्याम शर्मा इंदिरा शर्मा ते सार्थक शर्मा नाल ही साथी लिख के भेज रहे ने कि अज ता भयंकर गर्मी सी इस लई सारे ही स्रोतियां नूं अनुरोध कर रहे ने कि इस वैदर दे विच बाहर ना निकलिया जाए ते जेकर बाहर जाना ही पै जावे ते सिर ते कपड़ा लै के जरूर जाओ ते नाल ही नाल पानी दी बोतल भी जरूर लैके जानी है। बिल्कुल जी बहुत नेक सलाह है। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा वध रही है। दोपहर दा ते वेला अपना खास करके ध्यान रखने वाला है। अपने आप नूं इस गर्मी दे मौसम दे विच हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। ते इस दे नाल ही एक होर साथी साढ़े नाल जुड़े जिन्होंने पिंड हीरावली जिला फजिलका तो मैसेज भेजा है। सुभाष गोदारा पिमला गोदारा इंदू पार्वती हिमांशु लिखते ने अज हो सके तो एक दूजे के लिए फिल्म का गीत सुना दिता जाए। मैं कह जी फरमाइश आई है तो फरमाइश नू पूरा करना तो फिर बंद है। तो लो जी फिर इन्हां दी फरमाइश ते सुनते हाँ फिल्म एक दूजे के लिए दा गीत जिसनू आवाज़ दिती है लता मंगेशकर ते अनूप जलोटा ने।

हाँ जी प्रोग्राम चल रहा है जी दिल चाहता है, हिंदी ते पंजाबी फिल्मां दियां फरमाइशां दा प्रोग्राम जिस विच तुहाड़ियां फरमाइशां नूं पूरा किया जाता है। ते प्रोग्राम दे विच अगली फरमाइश केना नहीं भेजी है, आओ फिर जानते हैं मैसेजेस वाले झांक मार लें जी। अगला मैसेज प्रोग्राम दे विच पहुंचिया जी गगन वड़ैच वालों, दबुरजी अमृतसर तो मैसेज आया जी, इन्हों का सत श्रीकाल लिख के भेजी है इन्होंने। तो नाल ही इन्होंने लिखा है कि गीत जड़ा है सुना दिता जाए, पंजाबी गीत गीत दे बोलने जे मुंडिया साड़ी तौर तू वेखणी। मैं कहा जी नाल ही इन्होंने थोड़ी जी शिकायत भी प्रोग्राम दे विच मैसेज दे राही भेजी है कि पंजाबी गीत क्यों नहीं प्ले किए जाते। मैं कहा जी फिर दसना चाहते हैं तुहानू कि दोस्तों के मैसेज ज़्यादा तो ज़्यादा फरमाइशा जी पूरी करने की कोशिश रहती है, पर कोई फरमाइश रह जाती है। यही कारण है शायद कि किसी दोस्त का मैसेज जो प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, पर नाम जरूर प्रोग्राम के शामिल करने की कोशिश रहती है। तो लो जी फिर इन्होंने गल की है मुंडिया की तौर दी वेखण दी, तो फिर सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत। आवाज़ दी है जी नरेंद्र बीबा ते के अग्निहोत्री ने।

हाँ जी, मैगी जी प्रोग्राम दे विच एक बार फिर स्वागत। इस प्रोग्राम दे विच बहुत सारे दोस्तों दे मैसेजेस आज साढ़े तक पहुंच गए। मैगी जी, शनिवार की रात है ते हर कोई अपनी फरमाइश लेके तैयार है। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सन्नी, मुन्नी, काका, बिट्टू, लाडी मोहन, मास्टर जनक नगर जलंधर तो मैसेज कर रहे ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

शोर तो दूर, रात इस पहर दे प्रोग्राम याद दिलांदा है कि जिंदगी विच ठहराव जरूरी है, आराम नाल बैठ के सोचना भी जरूरी है। की सोचिया सी, की कर रहे हैं, कित्थे पहुंचे हैं ते कित्थे पहुंचन दी उम्मीद है। एहसास जज्बात पर्याय प्रोग्राम जिंदगी दे विच लोगां दे साथ दी बहुत जरूरत हुंदी है। जेकर ये साथ ना होए जिंदगी बहुत औखी हो जाती है। इस साथ ते जीवन गुजारे ते आमिर अमीर लिखदे ने, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या उस पे मबरी कोई तस्वुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। प्रोग्राम शामे गज़ल दी पहली गज़ल तुहाडे पेशे खिदमत करन जा रहे हैं आवाज़ चंदन दास दी।

प्रोग्राम शामे गजल सुन रहे हो तुसी। दोस्तों गल हुई जिंदगी नू मनाउण दी, यानी कि तलाश। जद जिंदगी नू मनाउण निकले तो इस सफर विच कई गलियां विचों हो के गुजरना पैना है। कुछ गलियां तो आसानी नाल अगे दा रस्ता दस दिंदी है, सिद्धियां गलियां होंदियां, ते कुछ गलियां दे मोड़ तुहानू तुहाडे मंजिल तो भटका भी सकते ने। पर जब तक इन्हां गलियां दे विचों गुजरीए ना, तद तक पता किवें चलेगा कि मंजिल का सही रस्ता केड़ा है। इस ते ही तहजीब आफी लिखते ने, कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, तो छट जाता है सब गर्द गुबार आहिस्ता आहिस्ता।

जिंदगी के कई साल भटकते भटकते यूं ही गवा दिए, मगर तलाश थी किसकी। अफरोज आलम लिखते हैं, बड़ा खुशनुमा ये मकाम है, नई जिंदगी की तलाश कर, तू ना अपने जहन की बात कर, नई दोस्ती की तलाश कर, जो नहीं मिला इस जिंदगी में उसे छोड़ आगे बढ़, मंजिल भटकते भटकते मिल ही जाएगी। कुछ ना भी मिला तो खुदा तो मिल ही जाएगा। प्रोग्राम शामे गजल दे विच, इस प्रोग्राम दी आखरी गजल पेश करन जा रही हां घनश्याम वसवानी दी आवाज दे विच। इस दे नाल ही मैनू दियो इजाजत, मिलांगे तुहानू ठीक 10:30 बजे लैके प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं।
1: मोहब्बत ते किस दा वास है जदों ये होनी हुंदी है ते बस हो ही जाती है दो दिलों के विचकार। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे तुसी बने हुए अपनी दोस्त आरजे निहारल हंदे नाल।

उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे हो तुसी।

वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी।